मेरा खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल, गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल, मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेटफुल, हरकते मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूँगा मैं सारा वेकफुल, याद रखना ऑल द वन एंड ओनली वेकफुल।

0: DJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो

0: अशोक आनंद मार्ग चितवन, मोबाइल 98550509 34।
1: प्रत्येक श्रोता को मन को आवाज, ती आवाज में सभी को मन, यो हो सामुदायिक रेडियो विजय एफएम, समुदाय को आवाज।